छेड़ेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से डले, ताकि हंसते हुए निकले हम।